0: सुनिए ना, आइए हम लोग आने में 8 बजे का छा
1: इस समय को साथ में जेतुल सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको 5 घरेता कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।

स्नातक तह भरना संबंधी रामबड़ी बहुमुखी कैंपस को सूचना। रूपंदेही को मरिग्राम स्थित रामबड़ी बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह प्रथम वर्ष में शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि अंग्रेजी र नेपाली

0: पहले हम लोग दुई बजे
1: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: बाल को सर्वाधिक बिक्री होने बजाज मोटरसाइकिल को अपग्रेड में पाउन होस ऑन बीटेबल कैश डिस्काउंट अनि ऑन बीटेबल एक्स्ट्रा वैल्यूएशन सजिलो 36 महीना को ईएमआई में साथ ही फ्री एक्सेसरीज उपलब्ध छ।
1: मेला हुने मिति यही साउन 10 गते देखि 16 गते सम्म। स्थान गल्याङ तिनचिन नेपानी। सम्पर्क मोबाइल 9846096248 र 9251120189।
2: भावपूर्ण श्रद्धांजलि एस आदिखोला संसार सहकारी संस्था लिमिटेड रेडियो आदिखोला 105.4 मेगाहर्ज वालिङ आठ स्याङ्जाका शुभ चिन्तक गोविन्द रेग्मी संचालक समिति सदस्य चक्रबन्धु रेग्मी शेयर सदस्यहरू चन्द्रावती पंगेनीका पिता एवं यस संस्थाका शेयर सदस्य विष्णु प्रसाद पंगेनीका ससुरा बुवा खेमानन्द रेग्मीको यही साउन 5 गते मंगलबारका दिन 86 वर्षको उमेरमा भएको निधनले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ। शोकको यस दुखद घड़ीमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्दछौ। साथै शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून् भनी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौ। शान्ता थापा अध्यक्ष, तुलाकान्त बगाले स्टेशन म्यानेजर एवं आदिखोला संसार सहकारी संस्था लिमिटेड रेडियो आदिखोला परिवार वालिङ आठ स्याङ्जा।

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सेंजा।

0: पहले हम लोग अनिमा 10 बजे अच्छा
1: इस समय को साथ में जेटु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।